नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में डीआरडीओ का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कल ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के

0: पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
1: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
3: I would like to say that the outcome document.
4: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
3: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिंफनी, एक लय, कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभ

0: साथी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
3: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगा और उड़ीसा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद डीआरडीओ का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री पुस्तकालय का दौरा भी करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वे लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृह मंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियान कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शलामचे सीमा चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजिश्कियन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
2: और अब खेल खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
5: महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आरेना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रैविट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटून कोज़ुमिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।
2: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान

0: हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले पांच दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से घोषणा पत्र की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टैरिफ के नाम पर दादागिरी बंद हो, सीमा पार आतंकवाद और वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। नवभारत टाइम्स के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष बातचीत से खत्म हो। जनसत्ता लिखता है, मोदी और चिनफिंग में द्विपक्षीय वार्ता, सीमा मुद्दों पर दोनों पक्ष स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध। दैनिक जागरण के अनुसार पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा से आतंकवाद से भारत के रुख को बल मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी समर्थन। लोकसत्य के मुताबिक डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स देशों ने चुना स्थानीय मुद्राओं का रास्ता। साझा मुद्रा से पीछे हटकर भुगतान व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 21 ब्रिक्स देशों की जुबानी भारत लिखेगा नई कहानी। 20 साल का हुआ ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 20 वर्ष के लिए हमें नई और महत्वाकांक्षी कार्य योजना पर काम करना होगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कहा, पाकिस्तान में है आतंकी हाफिज सईद। जम्मू की विशेष अदालत में दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी। कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपुरा और सोपोर में कई जगह तलाशी। डोडा में जैश आतंकी का शव मिला। अमर उजाला की सुर्खी है, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ रहा अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार। एटीएस ने आजमगढ़ से दबोचा। आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़े लोगों के ग्रुप में कोर्ट में होती थी बातें। हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग लेने वाला था मोहम्मद नबील। राजस्थान पत्रिका के अनुसार समंदर से बुझेगी मुंबई की प्यास। रोज 40 करोड़ लीटर मिलेगा पानी, चेन्नई के बाद दूसरा प्रमुख शहर बनेगा। संयंत्र में समुद्री पानी को आरओ तकनीक से खारा पानी मीठा होगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कम रैंक वाले कॉलेजों के ग्रेजुएट हार्वर्ड जैसा कमा रहे, अच्छी कमाई के लिए नामचीन डिग्री जरूरी नहीं। पत्र के अनुसार कॉलेज चुनने में कमाई को आधार न बनाएं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, दिल्ली में 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त इलाज, निगरानी के लिए समिति गठित होगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आर्यना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस, ब्रिक्स लीडर्स कंडेम 2025 पहलगाम टेरर अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर, कॉल फॉर जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, ऑल्सो एक्सप्रेस कंसर्न ओवर एस्केलेशन ऑफ टेंशंस इन वेस्ट एशिया। Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with presidents of Kazakhstan, Philippines, Egypt, South Africa and Burundi today on sidelines of BRICS summit. West Bengal government approves DRDO's proposal to set up weapon and missile testing range in Purv Medinipur district of the state. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Gujarat today. Irina Rybakina of Kazakhstan beats Belarusian Arina Sabalenka to win women's singles title of US Open tennis in New York. And in cricket, India to take on defending champion Sri Lanka in Women's Asia Cup final in Dubai this evening.

0: पोस्ट बॉक्स नंबर 111
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, ये तो हम जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी मन की बात में जिन विषयों का उल्लेख करते हैं, जिन हस्तियों का वो जिक्र करते हैं, उन्हीं को हम इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करते हैं। उन विषयों के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया स्वनिधि योजना का। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हम सभी के समक्ष है। आत्मनिर्भर भारत के पावन संकल्प को धरातल पर साकार करती पीएम स्वनिधि योजना ने अनगिनत छोटे व्यवसायियों के जीवन में उम्मीद का एक नया सवेरा जगाया। आज हमारे बीच एक ऐसी ही कर्मठ और स्वाभिमानी लाभार्थी उपस्थित हैं, साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि पीएम स्वनिधि योजना आखिर क्या है, किस प्रकार से इसका लाभ लिया जा सकता है और कैसे ये लाखों लोगों के जीवन में एक उम्मीद जगा रही है। तो मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ हैं श्री शैलेश कुमार, आप महाप्रबंधक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद नीलम जी।
1: हमारे साथ हैं श्री राजेश कुमार, आप महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक से। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद नीलम जी।
1: और हमारे साथ हैं श्रीमती बबीता शर्मा, जो कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं। बबीता जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
4: आपको सबको मेरा नमस्कार है और सबको धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं सबके बीच में आमंत्रित हो पाई।
1: तो मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं अपने विशेषज्ञों से, हम इनके जवाब जानेंगे और साथ ही योजना के बारे में आज हमारी जानकारी बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें प्रधानमंत्री जी ने इस योजना यानी स्वनिधि योजना का उल्लेख किया है।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती हैं, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती हैं। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35,00,000 महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टी एस निगम्मा जी

0: की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
1: तो श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आइए अब हम अपने उन सवालों के जवाब जानते हैं जिनके कुछ जवाब हमारे पास पहले से हैं, लेकिन आज क्योंकि हमारे विशेषज्ञ हमारे बीच हैं, तो ये हमें बताएंगे कि किस तरह से छोटी छोटी मदद लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाती है और जब जिंदगियां बदलती हैं तब देश किस तरह से बदलते हैं। तो शैलेश जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जब हम कहते हैं पीएम स्वनिधि योजना, तो किस प्रकार से आप इस योजना के बारे में बताएंगे, कैसे रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के साथ ये जुड़ी है योजना?
2: धन्यवाद नीलम जी मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए, और मैं इसमें बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने लोगों के साथ दिन रात मेहनत करते हैं सड़कों पे, फुटपाथ पे, गलियों पे, और उनको हम कैसे और उनका जीवन स्तर हम उठा सकते हैं और उन्हें और समृद्ध बना सकते हैं। इस संदर्भ में आपने हमें मौका दिया है कि हम इस योजना को उनके बीच कैसे सरलतम रूप से प्रस्तुत कर पाएं। प्रधानमंत्री महोदय ने इस पे 2 उदाहरण दिए हैं अपने मन की बात प्रोग्राम में, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगा। यह योजना बहुत ही सरल है। जो भी वेंडिंग का काम करते हैं, हॉकर्स हैं, किसी भी सड़क मोहल्ले गली में काम करते हैं, जैसा आपने कहा कि कुछ रेहड़ी और जो ठेला लगाते हैं या छोटे मोटे खोखे लगाते हैं, वो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, निबंधन कराना पड़ेगा। जो शहरी स्थानीय निकाय होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हम लोग बोलते हैं, वहां उनको एक प्रमाण पत्र जारी होगा वेंडिंग का, और उसके बाद केवल एक आधार की जरूरत है। और कुछ राज्य हैं जैसे असम और मेघालय, वहां पे मतदाता पहचान पत्र की जरूरत है
1: जी।
2: बस इतने ही कागजात के आधार पे वो आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए एक पोर्टल भी है और ऐप की भी सुविधा है, उसके थ्रू वो आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो स्थानीय निकाय के लोग होते हैं, शहरी स्थानीय निकाय के लोग, वो लोग भी उनकी मदद करते हैं अप्लाई करने में, आवेदन करने में। और ये लोन आज के डेट में पूरी तरह डिजिटल हो गया है, उन्हें किसी शाखा में जाने की भी जरूरत नहीं है, वो अपना जो दिन भर का काम है वो भी कर सकते हैं और साथ में वो लोन भी ले सकते हैं। उसमें केवल आधार में जो मोबाइल नंबर रहता है उस पे कुछ ओटीपी आएगा और वो ओटीपी को डाल करके वो अप्रूवल मिल जाता है और खाते में उनके ये पैसा आ जाता है। 3 चरण में ये योजना है। पहले चरण में हम अब 15,000 रुपये तक देते हैं
1: जी,
2: और इसमें ब्याज की भी चिंता नहीं करनी है। ब्याज में 7% की सब्सिडी, यानी अगर आपका जो भी ब्याज लग रहा है उसमें 7% जो सब्सिडी है वो सरकार देती है, और 15,000 का जो ऋण मिलता है उसे चुकाने के लिए लगभग 12 महीने का समय मिलता है। और इसको जो है वो चाहे तो इसका अर्ली भुगतान भी कर सकते हैं, और वह मिनिमम 6 महीना है। 6 महीने के बाद या 12 महीने के बाद इसका भुगतान करने के बाद दूसरे चरण का लोन मिल सकता है, और वो 15,000 के बाद जो अगले चरण का लोन मिलेगा वो 25,000 का होगा
1: जी।
2: और अगर वो उसे भी चुका देंगे उसके लिए 18 महीने का समय मिलता है। फिर जो अगले चरण का जो ऋण मिलेगा अब वो 30,000 से बढ़ के 50,000 हो गया है, और इसमें क्रेडिट कार्ड की भी अब सुविधा है। अब क्रेडिट कार्ड का भी लिमिट मिलता है, ताकि वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो होलसेलर हैं, जो थोक व्यापारी हैं, उनसे नॉर्मली ये लोग अपना सामान खरीदते हैं जो बेचते हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी अपने थोक विक्रेता से, जिनके यहाँ से ये अपना सामान लाते हैं,

0: क्रेडिट कार्ड से भी भुगतान कर सकते हैं।
1: जी, मैं राजेश जी आपसे जानना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है कि परिवार के एक से ज्यादा सदस्य इस तरह का काम कर रहे होते हैं, तो अगर किसी एक व्यक्ति ने बैंक से स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण लिया है तो क्या अन्य सदस्यों को भी मिल सकता है?
2: जैसा कि शैलेश जी ने मुक्त जो योजना है उसका पूरा पूरा बताया है
1: जी,
2: इसमें जैसा कि उन्होंने कहा कि आधार कार्ड, और वो आधार कार्ड मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए, और एक सीओबी जिसको सर्टिफिकेट ऑफ बेंडिंग कहते हैं, जो अर्बन लोकल बॉडी शहरी स्थानीय निकाय करती है, अगर घर के सदस्य अलग अलग कार्य में लगे हैं तो निश्चित रूप से वो लाभान्वित हो सकते हैं, उनकी पात्रता है इसमें
1: जी।
2: सबसे बड़ी जो एक महत्वपूर्ण काम हुआ पीएम स्वनिधि लाने का, इसके द्वारा जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल ग्रुप था, इनको कोई बैंक में खाता तो है बट जानकारी नहीं थी, उनको जोड़ा गया, तो उनको एक रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें कि अर्बन लोकल बॉडी का बहुत बड़ी भूमिका है, और उसके बाद बैंक की भूमिका है कि उनको हैंड होल्डिंग करे, डिजिटल से अवेयरनेस, चाहे वो लोन देते वक्त जब हम देते हैं लोन तो उनको QR कोड भी देते हैं, तो बैंकों की जो भूमिका रही है ना वो डिजिटल अवेयरनेस में बहुत ही सक्रिय रूप से उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट किया, ताकि आप देखिए कि हर ठेले खोमचे शॉप पे आपको QR कोड हर बैंक का मिलेगा, और कितनी सुविधा हो गई है। हमारे लोग हो सकता है कम पढ़े लिखे हों, लेकिन उनको जब ये हैंड होल्डिंग उनके साथ जो काम किया गया तो वो उसमें भी डिजिटल में भी बहुत ही सफल हुआ। तो ये सब पीएम स्वनिधि, जो कहते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर निधि, तो इसका मुख्य काम यही था कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, वह जागरूकता कैसे लाई जाए, चाहे वो डिजिटल हो या बैंकिंग से प्राप्त होने वाली सुविधाओं के बारे में हो
1: जी।
2: तो अर्बन लोकल बॉडी और बैंक की बहुत बड़ी भूमिका रही इसको सफल बनाने में, और इसको आगे भी ले जाएंगे। तो मेरा क्या है कि लोग को बताने पर, हैंड होल्डिंग करने पर वो सब समझदारी उनके अंदर आ जाती है जो कि इसको सफल बनाया है।
1: चाहे शुरुआत में वो जाना चाहे एक बार, लेकिन जब वो समझ जाते हैं पूरी प्रक्रिया तो आसान प्रक्रिया है,
2: बहुत ही आसान प्रक्रिया,
1: और बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी आसानी से ऋण ले सकते हैं और उसकी किस्त भी चुका सकते हैं जी। ये आपने बताया बबीता जी, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आपका नाम लिया है, आपका जिक्र किया है, और आपके नाम से बहुत सारे लोग प्रभावित भी हुए हैं, प्रेरित हुए हैं। आप बताएं कि लोग किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या बात आपसे कर रहे हैं आजकल?
3: मेरे पास बहुत कॉल आते हैं
1: जी,
3: जैसे डीएम जी से मिल के आई हूँ तो उन्होंने मेरा सम्मान किया है, और डोडा विभाग से जहाँ से मैं ये योजना का मुझे लाभ मिला तो वहाँ भी मुझको सम्मानित किया गया था। तो मैं तो सभी लोगों से यही कहूंगी कि इस लाभ को लेने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ती, किसी को भी इतनी दिक्कत है कि मतलब छोटे छोटे लोन नहीं ले पाते, पहले नहीं मिलता था, मुझे भी नहीं मिलता था कि गारंटर जरूर चाहिए था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अपना आधार कार्ड ले जाकर और एक पीला कार्ड बनता है जो लाभार्थी का बनता है, वो बहुत जरूरी है, उसको लेकर अगर जाएंगे तो लोन बहुत जल्दी से अप्लाई होता है, कोई धक्के खाने की जरूरत नहीं है, और मेरे लिए भी ऐसे ही हुआ। तो मैं तो यही चाहूंगी अगर आप किसी भी को भी योजना चाहिए तो अपना पीला कार्ड और आधार कार्ड लेकर जरूर जाएं
1: जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप अपना काम कर रही थी तब शुरुआत में किस तरह की दिक्कतें आई, कैसी परेशानी आई?
3: मैंने लॉकडाउन से पहले जब कोरोना काल हुआ था उस टाइम पे मेरा काम था
1: जी,
3: लेकिन कोरोना काल आने के दौरान मेरा काम बिल्कुल बंद हो चुका था
1: जी,
3: तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो लेकिन एक मेरे भाई हैं जो डोडा विभाग में ही काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक पीला कार्ड बन रहा है बहन, उसको बनवा ले और उससे तुझे थोड़ी सहायता मिलेगी। तो मैं पीला कार्ड बनवाने के लिए मैं गई थी डोडा विभाग में, तभी मुझे सारी टीम ने मुझे समझाया कि इससे 10,000 रुपए का लोन लेकर आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं
1: जी।
3: तो मैंने 10,000 का लोन लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और मेरा काम थोड़ा अच्छे से चला
1: जी। बहुत अच्छी बात है, आपसे और भी मैं सवाल करूंगी। ये बताइए कि आप अपनी पसंद का कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनवा रही हैं?
3: मेरी पसंद का गाना है मदर इंडिया मूवी का, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा।
1: आपने बहुत ही प्रेरित करने वाला गाना चुना है, लीजिए आपकी पसंद का यही गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। दुनिया

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम जान रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। हमारे विशेषज्ञ इस समय हमारे साथ हैं। हमारे साथ श्री राजेश जी हैं, आप महाप्रबंधक, शैलेश जी महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और श्री राजेश कुमार महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक से, और हमारे साथ इस योजना की लाभार्थी हैं श्रीमती बबीता शर्मा। अले जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बबीता जी ने जिक्र किया पीले कार्ड का, क्या ये वही वेंडर्स कार्ड है जिसकी आप उल्लेख कर रहे थे?
1: ये अर्बन लोकल बॉडीज इशू करती है, जो शहरी स्थानीय निकाय हैं वो इशू करते हैं
0: जी।
1: लेकिन अब इस योजना का विस्तार जो है शहरों से निकल कर छोटे छोटे कस्बों में भी जा रहा है
0: जी।
1: सो वहाँ पे जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनको दिया गया है कि वो एक LOR इशू कर सकते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो वैसे जगहों के लिए जहां अर्बन लोकल बॉडीज नहीं है, वहां पे जो वीडियोस LOR इशू कर रहे हैं, यानी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यानी अनुशंसा पत्र जो इशू कर रहे हैं
0: जी,
1: उसके आधार पे भी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या हॉकर्स हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है
0: जी। जैसा कि बबीता जी ने भी जिक्र किया, पहले ये धारणा थी कि अगर हमें बैंक से लोन चाहिए तो हमें किसी ना किसी तरह की गारंटी जो है वो देनी पड़ेगी, और ये आश्वासन देना पड़ेगा बैंक को कि हम आपका लोन जरूर चुकाएंगे। मैं विशेष तौर से आपसे जानना चाहूंगी, स्वनिधि योजना से जुड़ी क्या इस तरह की कोई नियम और शर्त है?
1: बिल्कुल नहीं, ना ही किसी की गारंटी देनी है, ना ही कुछ भी आपको अपना संपत्ति या कुछ भी बंधक में रखना है। और जो लोग ठेला वगैरह चलाते हैं वो ठेला भी, उसमें भी कुछ लागत लगती है उनकी, तो उस पे भी कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता है
0: जी।
1: ना ही मॉर्गेज क्रिएट होता है, ना ही हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट होता है, कुछ भी नहीं होता है। वो पूरी तरह से उनके खाते में ये पैसा मिल जाता है। जैसे बबीता जी ने बताया कि इन्हें 10,000 का लोन पहली बार में मिला था
0: जी।
1: अब ये राशि बढ़कर 10,000 से 15,000 हो गई है। और जैसे कि राजेश जी ने बताया कि हर वेंडर्स के पास हम लोग QR कोड लगा रहे हैं, ताकि जो भी वो खुदरा बिक्री करते हैं उसका लेन देन जो है डिजिटली हो जाए
0: जी।
1: तो उसपे भी उन्हें कैशबैक मिलता है। और जिस थोक विक्रेता से वो अपना माल खरीदते हैं
0: जी,
1: उसको भी अगर वो डिजिटल लेन देन करते हैं तो वहां पर भी कैशबैक है। वहां पे भी 2,000 रुपये के ऊपर के ट्रांजेक्शन पे उनको कैशबैक मिलता है
0: जी। यहाँ मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि किन्हीं परिस्थितियों में अगर जिसने ऋण लिया है वो ऋण ना चुकता कर पाए बैंक का, तो ऐसे में क्या होता है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या कोई दंड का प्रावधान है?
1: इसमें जैसा आपने कहा कि कोई गारंटी लगती है कि नहीं लगती है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की

0: संस्था है सीजीटीएमएसई
1: जी,
0: जो सिडबी के द्वारा प्रमोटेड है, प्रायोजित है, तो यहाँ पे सरकार इसका गारंटी फी देती है इस संस्था को, तो ये ऋण जो है उस संस्था के द्वारा गारंटीड रहती है। जब इसमें डिफॉल्ट होता है या लोग नहीं चुका पाते हैं, उसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं कि ये अकाउंट एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया
1: जी,
0: तो वैसे केस में बैंक को कुछ पैसा, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ पैसा उस गारंटी फी के बदले में, वो जो कंपनी जो सीजीटीएमएसई जो गारंटी प्रदान कर रही है
1: जी,
0: उससे कुछ पैसा बैंकों को मिल जाता।
1: लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती।
2: बिल्कुल, ऐड करना चाहूंगा कि बैंक का लोन खराब होगा, लेकिन सबसे बड़ी जागरूकता की बात है, इस आकाशवाणी के माध्यम से सारे श्रोताओं को बताऊंगा कि किसी भी लोन में भी हम सुनने में भी उस तरह से कि आपका जो सीआईसी है उसमें डिफॉल्ट अगर आता है तो भविष्य में आपको कोई भी ऋण लेने से आपको शायद बाधा पहुंचे
1: जी।
2: तो इसलिए है कि जागरूकता की 10,000 नहीं, 15,000, 25,000, 50,000 नहीं, उसके आगे भी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध है
1: जी।
2: तो जो लोग सफलतापूर्वक इसको पुनर्भुगतान करते हैं उनका एक क्रेडिट हिस्ट्री तैयार होता है जिससे उनको आगे लोन लेने में सहायता मिलती है। अगर उन्होंने पहला लोन खराब कर लिया या इसमें किसी भी स्तर पे खराब किया तो उनका जो सिविल स्कोर या सीआईसी बोलते हैं
1: जी,
2: जो हिस्ट्री है क्रेडिट की, उसमें डिफॉल्ट दिखेगा तो आगे लोन लेने में उनको असुविधा होगी।
1: यानी अगर नियमों का पालन करते हुए सही समय पर लोन चुकाते हैं तो आगे एक बहुत बड़ी राशि भी मिल सकती है और वो बड़ा काम कर सकते हैं। और अगर परिस्थिति वश कभी ऐसा हो जाता है कि आप नहीं चुका पाए तो उसका आगे फिर नुकसान हो सकता है जी।
0: नीलम जी, यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो सरकार के द्वारा इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी मिलना है जो 7% है
1: जी,
0: वो सब्सिडी का फायदा भी तभी मिलेगा जब आप समय से ऋण को चुकाते हैं। और इसमें जो सीआईसी में जो उनका डिफॉल्ट नजर आता है उसको कह सकते हैं कि मार्केट में आपकी साख चली गई
1: जी, बिल्कुल,
0: तो आप विश्वास खो जाते हैं मार्केट का। और ये सब डेटा जो है डिजिटली अवेलेबल होगा, सो जितने भी फॉर्मल सेक्टर के लेंडर हैं वो हमेशा कोई भी आवेदन अगर आपके पास आता है ऋण का तो उसको स्वीकृति करने के पहले उस डेटाबेस को देखते हैं
1: जी।
0: तो वहां पे अड़चन आएगी, वहां पे बाधा आएगी कि उनका रिकॉर्ड में नजर आएगा कि ये इस लोन में इन्होंने डिफॉल्ट किया था, तो यहाँ पे साख जो है आपकी गिर जाएगी
1: जी। यानी बहुत सरल तो इस विधि को रखा गया है लेकिन इसमें विश्वसनीयता बनी रहे इसका भी ध्यान रखा गया है। और यदि अपने काम को लेकर कोई गंभीर हो, सच में उसे जरूरत है, तभी वो लोन के लिए अप्लाई करे। यहाँ मैं शैलेश जी आपसे आपकी पसंद का कोई गाना जानना चाहूंगी। हमारे श्रोताओं को कौन सा गाना आप सुनवा रहे हैं?
0: लाल पत्थर फिल्म का है, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, ये
1: जी,
0: विनोद मेहरा पे फिल्म आया
1: जी, वो पियानो बजा रहे हैं इस गाने में। ठीक है, तो हम यही गाना सुनवा रहे हैं अपने श्रोताओं को।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए आपने बताया कि QR कोड आप देते हैं जो भी वेंडर्स हैं उनको, ऐसे में ये बताएं कि बैंक में आवेदन प्राप्त होने के बाद लोन स्वीकृति जो होती है और जो वितरण होता है उसमें लगभग कितना समय लगता है, और कई बार हमारे जो वेंडर्स होते हैं वो ऐसी स्थिति में भी होते हैं कि बहुत ज्यादा लिखना पढ़ना वो नहीं जानते हैं, तो क्या बैंक की ओर से उन्हें कोई इस तरह की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है कि उनकी ओर से ये काम बैंक स्वयं कर दे?
1: जहाँ तक बात है कि लोन का डिजिटल होने में, अगर जिस बैंक ने स्वनिधि योजना जो है उसको अगर डिजिटल में कर लिया
0: जी,
1: जो तीनों चरण है इसके, प्रथम द्वितीय और जिसमें अलग अलग राशि का लोन दिया जाता है, तो इसमें एक से दो दिन लगता है
0: जी।
1: और अगर उससे हटकर ऑफलाइन मोड में जैसे अर्बन लोकल बडी के पोर्टल पे एप्लीकेशन आया, बैंक के पास गया, तो इसमें 3 से 5 दिन में सैंक्शन हो जाता है
0: जी।
1: और इसके लिए मुख्यतः उनको जागरूकता या उनको इसकी समझदारी बढ़ाने के लिए कि वो किस प्रकार से डिजिटल में या पोर्टल में, उसके लिए हम लोग अपने बैंक कर्मियों, जैसे बैंक में जो स्टाफ है, ऑफिसर है और या बीसी कॉरेस्पोंडेंट है
0: जी,
1: उन सब की सहायता लेकर के और हैंड होल्डिंग करके अर्बन लोकल बॉडी के साथ मिलकर आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं, कैंप्स करते हैं, और वहां जो लाभार्थी हैं उनको बुला करके वन बाय वन पोर्टल से अवगत कराया जाता है। डिजिटल लेंडिंग अगर उपलब्ध है उस बैंक में तो उसको डिजिटली कैसे करना है, क्योंकि शैलेश सर ने बताया कि OTP आती है और आने के बाद वेरीफाई होता है और लोन सैंक्शन और डिसबर्स हो जाता है अकाउंट में, क्योंकि इसकी राशि बहुत बड़ी नहीं है और चूंकि इसमें CGTMSE की गारंटी उपलब्ध है, तो मैं निर्भीक होकर जो अपना काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बैंक भी इसमें बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दे रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। और हैंड होल्डिंग, बीसी कॉरेस्पोंडेंट, बैंक कर्मी और ULB के लोग सब लोग मिलकर कर रहे हैं, तभी ये इस मुकाम पे पहुंचा है ये
0: जी। राजेश जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हमने ये तो बात की कि अगर लोन समय से चुकता नहीं हो पाता तो बाजार में साख जो है वो खराब होती है, लेकिन अगर समय से लोन जो है वो चुकाया जा रहा है और अच्छा हमेशा व्यवहार रहा है तो क्या इसका लाभ मिलता है, और किस बड़ी राशि की हम अभी बात कर रहे थे?
1: निश्चित रूप से PM स्वनिधि एक मैं कहूंगा कि प्रथम चरण है
0: जी,
1: जिसमें हमने और भारत सरकार ने, बैंकों ने, अर्बन लोकल बड़ी ने मिल करके जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको जोड़ा है, उनका फाइनेंशियल वित्तीय समावेशन क्रेडिट लिंकेज करके किया, ये शुरुआत हुई और इसको जिन लोगों ने सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया वो हमारा आप जानते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
0: जी,
1: जिसमें कि 20 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है और शुरुआत में ये 50,000, 5 लाख और 10 लाख, और 10 लाख का सफल होने पे वो फिर 20 लाख का लोन भी ले सकते हैं
0: जी।
1: और उसके लिए भी इतनी ही सरलता है कि आपका रजिस्ट्रेशन है, आधार कार्ड हो गया, और जैसे अगर बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं तो थोड़ी सी हैंड होल्डिंग बैंक की चाहिए होती है उसमें कि उनका जो बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रारूप लेकर के और उसको पोर्टल पर ही, उसके लिए भी पोर्टल बना हुआ है, वहां से करके सैंक्शन हो जाता है और वो 50,000 का सैंक्शन सफलता करते हैं। नेक्स्ट में वो जैसे शिशु, किशोर एंड तरुण
0: जी,
1: तीन चरण है जिसमें 50,000 और 5 लाख और 10 लाख। तरुण यदि आपने सफलतापूर्वक कर लिया भुगतान तो तरुण प्लस जो कि 20 लाख का लोन होता है मुद्रा योजना के अंतर्गत भी, इसमें भी कोई गारंटी नहीं, कोई बंधक नहीं, और आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा है तो आप उसके लाभान्वित हो सकते हैं
0: जी।
1: ये है और उसके आगे तो अंत नहीं है। बैंक जिस तरह से आज सुदृढ़ स्थिति में है,

0: अपने वित्तीय जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसका रीढ़ बना हुआ है, तो निश्चित रूप से जब एक अलग तरीके का एक कैटेगरी तैयार हो रहा है पीएम स्वनिधि के माध्यम से, जो निश्चित रूप में एक बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने में सहायता प्रदान करेगा।
1: जी, ऐसे में ये बताएं कि जैसा आपने कहा कि किसी ने लोन लिया और समय पर चुका भी दिया, लेकिन या तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या वो ज्यादा जानकारी नहीं है उन्हें अन्य कामों की, लेकिन जैसा आपने कहा कि उनका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा है, साख उनकी अच्छी है, बैंक उन्हें ज्यादा लोन दे सकता है, तो क्या ऐसी भी कोई योजना है कि एक व्यक्ति अगर कोई बड़ा

0: में लाइवलीहुड मिशन के तहत जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी बहुत जोर शोर से काम चल रहा है भारत में, और इसमें मुख्यतः भारत की नॉर्थ ईस्ट, बिहार, यूपी, राजस्थान, और अपना जो मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह का निर्माण करके जो लोग समूह बना करके लोन ले सकते हैं, और ये शुरुआत में 6 महीने की डेवलपमेंट उनकी ग्रूमिंग होती है कि उनको बैंकिंग प्रणाली की और बैंकिंग लेन देन की समझदारी दी जाती है उनको। उसके लिए लाइवलीहुड मिशन है जो काम करता है बैंकों के हेल्प से, और इसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़ा समूह उभर के आ चुका है ऊपर, जो लगभग करोड़ करोड़ के लोन उन लोग को मिल रहा है जब वो लेवल वाइज उठते जाते हैं उससे। तो निश्चित रूप से SHG ग्रुप है और JLG भी है, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप, जिसमें नाबार्ड के हेल्प से हम लोग काम करते हैं। तो निश्चित रूप से ये जब समूह बनाएंगे तो बैंक में और सरकार ने योजना दी हुई है जिनकी मदद से वो एंटरप्रेन्योरशिप को और ऊपर ले जा सकते हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं।
1: जी, व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं और उसके लिए सुविधाएं हैं। जी, ये बताएं कि आप कौन सा गाना सुनवाना चाह रहे हैं हमारे श्रोताओं को।
0: मैं चूंकि PM स्वनिधि के कार्यक्रम में आया हूं
1: जी,
0: और तो मैं चाहूंगा कि न सर झुका के जियो न मुंह छुपा के जियो।
1: वाह, बहुत अच्छा गाना आपने ये चुना है, सुनील दत्त साहब का, आपकी पसंद का यही गाना हम सुनवा रहे हैं।

0: तो श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। योजना की लाभार्थी हमारे साथ हैं बबीता शर्मा जी और साथ ही हमारे विशेषज्ञ हैं बैंकिंग सेक्टर से, जो बता रहे हैं कि इस प्रकार की योजनाएं और सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं और छोटी छोटी सी प्रक्रियाएं हैं, उनका पालन करते हुए, कुछ नियमों का पालन करते हुए लोग अपना काम करते हुए अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि पैसे से पैसा कमाया जाता है, लेकिन जिस पैसे से पैसा कमाया जाता है वो शुरुआती धनराशि जो है वो जुटाना बहुत मुश्किल होता है और कभी बहुत मिन्नतें करने कोई पसंदीदा चीज छोड़नी पड़ती थी, गिरवी रखनी पड़ती थी, तब धनराशि मिलती थी, तब लोग सुविधाएं हैं इन्हें दूर कर चुकी है पीएम स्वनिधि योजना। क्योंकि अब शुरुआती धनराशि जो है भले ही वो थोड़ी छोटी है, लेकिन अपने काम की शुरुआत करने के लिए बहुत जरूरी धनराशि बैंक से मिल जाती है और धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाते हुए अपनी मेहनत के बल पर बैंकों से और धनराशि प्राप्त की जा सकती है, अपने समूह को बड़ा किया जा सकता है और इस तरह से अपने सपने को भी छोटे से बड़ा किया जा सकता है और फिर उसी सपने से जुड़ता पूरा परिवार, जैसे बबीता जी का परिवार जुड़ा हुआ है। बबीता जी बताएं कि अभी परिवार में कौन कौन सदस्य हैं और आपके काम से सीधे जुड़े हैं।
1: मैं सबसे अपने श्वेता से हाथ जोड़कर सबसे कहना चाहती हूँ, मेरे परिवार में 3 बेटे हैं मेरे जी और 1 मैं, 4 हम प्राणी हैं
0: जी।
1: कभी उम्मीद नहीं की होगी ये पीएम सुनिधि योजना से जुड़कर, पीएम माने साक्षात पीएम जी मेरे साथ चलते हैं। उस सुनिधि का मतलब है हो गया मेरा सुनहरा पल
0: जी,
1: सुनहरा सफर मेरा चालू हुआ जब मुझे इस योजना से जुड़ने का अवसर मिला। तो आज मैं इस मकाम पर हूँ कि इससे अपने बच्चों की फीस भी भर पाई हूँ और अच्छे कुछ लोग हैं जो मैं गरीब बेटियों की शादी में भी कन्यादान मुक्त दे देती हूँ। और एक एनजीओ है मेरी, ये बात सुनो, तो उसमें कभी कभी 31 बेटियों की शादी भी होती है, तो उसमें मैं अपने पूजा का सामान सारा ऐसी भेजती हूँ उनके कन्यादान के लिए
0: जी।
1: मुझे इतनी खुशी है आज शायद उसका फल मुझे आज मिला जब मैं यहाँ इस मकाम पर पहुंची। यार मोदी जी का मुझे थोड़ा उन्होंने मेरा जिक्र जैसे किया है तो मैं चाहती हूँ जैसे आज मेरा जिक्र किया सभी महिला है या पुरुष है इसी योजना का लाभ उठाकर वो भी बन सकते हैं आज
0: जी।
1: मोदी जी के जिगर के करीब आज मैं इतनी खुश हूँ कि नहीं बता सकती हूँ कि मैं आज कितनी मुझे खुशी हो रही है सब लोगों से मिलकर कि इस मंच पर मैं आज पहुंची। तो कहीं ना कहीं पीएम जी की शुभकामनाएं मेरे साथ या उनका साथ मेरे लिए बना रहा। लाभ भारती का मतलब होता है कि लाभ, किस तरह का लाभ, एक मैं लाभ भारती किस लिए भी देखी हूँ, इस योजना का लाभ मुझे मिला तो आज मैं लाभ भारती का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो मैं आज अपने परिवार को अच्छे से पाल पाई और उनको अपने पैरों पर खड़ा कर पाई और अपनी इज्जत से मान सम्मान अपने माँ बापों का नाम रोशन कर पाई, तो इसलिए सब लोग का आभार प्रकट करती हूँ
0: जी। तो आपके बेटे जो हैं वो आपके काम में हाथ बटाते हैं
1: जी। मेरे जब ये कोरोना काल था तो हम तीनों माँ बेटा बड़े दुबक दुबक कर पर्ची लेकर अंदर से सामान दिया करते थे। बेटे मेरे सुबह स्कूल जब जाते थे तो दुकान खोल करके जाते थे तो मैं इतना उनका लंच बना देती थी, तो जब वो स्कूल जाते थे तो मैं दुकान पर बैठ जाती थी, तो जब वो दोपहर को आना 1 घंटे बाद उनको आराम करके तो शाम के टाइम उनको बैठा कर फिर खाना बनाने जाती थी। तो मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चली और मेरे
0: और
1: बच्चों
0: अभी
1: ने मुझे
0: बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं
1: जी, मुझे मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया
0: जी।
1: हर बच्चे ऐसे हों जो एक माँ को सपोर्ट करें एक हस्बैंड के जाने के बाद, तो कहीं ना कहीं मैं सभी बच्चों को ऐसी एक वो देती हूँ। मेरे बच्चों में आज किसी चीज का ऐब या कोई ये नहीं है कि बहुत से बच्चों को देखती हूँ मैं कि माँ जॉब करने जाती है

0: मैंने इस तरीके को रख के देखा कि अगर आज मैं जॉब करने जाऊंगी तो मेरे बच्चे कहीं ना कहीं भटक जाएंगे, तो मैंने ये कार्य अपनाया, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे थे तो उनको बड़ा शौक था, तो 2-2 रुपए की कभी टॉफी लेकर आते थे तो दरवाजे पर रखकर एक स्टूल बैठ जाते थे, तो जैसे हमारी गली है तो उसी में ही सब बच्चों को बुलाकर इतने में उस चीज को बेच देते थे।
1: जी,
0: तो मुझे
1: यानी छोटी
0: कहीं
1: उम्र से ही आपने
0: जी
1: स्वावलंबन सिखाया उन्हें।
0: मुझे ये कहीं ना कहीं लगा कि स्वाभिमानी से भी जीना है और मेरे बच्चे साथ मेरे रहेंगे तो मैं उनको पाल भी पाऊंगी और उनको अच्छे से परवरिश भी दे पाऊंगी, तो इसलिए मैंने जॉब को ना कर कर ये
1: अपना काम
0: रास्ता
1: आपने शुरू
0: अपनाया,
1: किया।
0: तो
1: जी
0: इसमें मुझे अच्छा एक रिस्पॉन्स मिला अपने बच्चों से भी। तो सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे आज मेरे बच्चे आज मेरे साथ में सपोर्ट कर बन के खड़े हैं और आज मैं यहाँ हूँ, कुछ ना कुछ उसमें आज मेरे बच्चों का भी सपोर्ट है, तो सबके बच्चे ऐसे बने और अपनी माँ का नाम रोशन करें और मेरी
1: जी
0: तरह एक महिला बनके अपने आप में सम्मान को बचा सकती है और पैरों पे खड़ा हो सकती है।
1: जी बहुत सारी शुभकामनाएं आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से बबीता जी मैं आपको देती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ये सुनना, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि एक महिला अपने स्वाभिमान के साथ ये काम कर सकती है, और
0: जी
1: दूसरा आपने अपनी जो कहानी हमें बताई है उससे हमारे ऐसे बहुत सारे श्रोता प्रेरित जरूर हुए होंगे जो जीवन में इस समय कहीं किसी कठिन दौर का सामना कर रहे हैं, किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। तो अपने आसपास के लोगों से मदद मांगिए, उनसे जिक्र कीजिए, क्योंकि हमारे लिए ऐसी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं सरकार की ओर से दी गई होती हैं, जिनकी कई बार हमें जानकारी नहीं होती, और जानकारी के अभाव में जो हमारा संघर्ष का समय है वो थोड़ा सा और जटिल लगने लगता है। लेकिन जब मदद का हाथ मिलता है तब हमारी परेशानियां दूर होने लगती हैं, और बबीता जी इसका साक्षात उदाहरण हमारे सामने इस समय हमारे स्टूडियो में बैठी हैं। बबीता जी आपसे मैं और बातें करूंगी और आपसे बहुत कुछ जानना है। शैलेश जी मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है इसने जो अनौपचारिक क्षेत्र है हमारा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, जैसे रेडी पटरी वाले और अन्य खोमचे वाले हैं, खोखे वाले हैं, इनको मुख्य धारा की बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का किस तरह का स्वाभिमान दिया है, किस तरह का आत्मविश्वास इस योजना ने दिया है?
2: यह योजना एक तरीके से कहें तो बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आया है।
1: जी
2: क्योंकि ऐसे जो वो मनी लेंडर या जो बाजार में जो लोग उधार देते हैं, अब वह काफी महंगा होता है और उनके वसूली की प्रक्रिया भी काफी कठिन होती है
1: जी,
2: और ऐसे में ये बिल्कुल ही सरल है, और इससे ना ही उसमें उनमें केवल आत्मनिर्भरता आई है, स्वावलंबन आया है, इसको हम लोग स्वनिधि से समृद्धि की ओर का भी एक हम लोग देख सकते हैं कि रास्ता तैयार हो रहा है। और जैसा कि राजेश जी ने कहा कि आगे अगर वो मुद्रा योजना का भी लाभ लेते हैं
1: जी,
2: तो हम केवल यहाँ पे स्वरोजगार की बात नहीं है, यहाँ पे आप रोजगार का सृजन भी करते हैं और समाज के दूसरे लोगों को भी रोजगार मुहैया करा सकते हैं
1: जी।
2: तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि इस छोटे से स्वनिधि से आप प्राप्त कर सकते हैं, और यह बैंकरों को भी काफी संतोष और खुशी प्रदान करता है कि मात्र 15,000 रुपये के ऋण से शुरुआत करके वो हजारों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो यह सबके लिए, जिसको कहते हैं विन विन सिचुएशन फॉर ऑल, ये सभी के लिए काफी अच्छा है, देश के लिए, समाज के लिए, बैंक्स के लिए, सबके लिए अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुख्य धारा में जुड़ें और देश की आर्थिक विकास में सहयोग करें।
1: जी राजेश जी आपसे जानना चाहूंगी, ऐसा कहा जाता है कि कई बार जो आर्थिक परेशानियां होती हैं वो व्यक्ति को किसी ना किसी अपराध की तरफ भी धकेल देती हैं, तो आपका क्या विचार है इस बारे में कि जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ते हैं, एक डेटा तैयार होता है, तो क्या इससे अपराधों में भी कमी आई है?
3: निश्चित रूप से जब रोजगार के अवसर नहीं होते हैं तो भटकाव एक बहुत सारे ऐसे तत्व हैं हमारे समाज में जहां पर कि लोगों को ध्यान आकर्षित करते हैं और कुछ बह जाते हैं उसमें। निश्चित रूप से पीएम स्वनिधि योजना इसमें 18 वर्ष से ऊपर जो ऋण के लिए पात्रता होती है उन सबको एक अवसर दे रही है कि वो किस तरह से अपना रोजगार, स्वरोजगार आरंभ कर सकते हैं और उसके लिए कि स्वनिधि से समृद्धि की तरफ, तो बहुत ही अच्छा एक अवसर है कि वो सारे युवा, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, या जो भी इसमें योग्यता पात्रता के हिसाब से है, इसका लाभ उठा करके निश्चित रूप से इस अपराध के जो अवसर थे उसमें कमी आई है और लोग रोजगार

0: की तरफ बढ़े हैं, अपने जीवन के स्वावलंबन की तरफ बढ़े हैं।
1: जी बबीता जी, आपसे जानना चाहूंगी, जब सबसे पहले आपको लोन की पहली किस्त मिली तो क्या बदलाव आया, उसका आपने क्या किया?
2: मैंने उसका, उस टाइम पे मेरा काम बंद था तो उसमें अपना सामान उठाकर अपनी दुकान में लगाया और व्यापार मैंने अपना चालू किया।
1: जी
2: तो ये अभी सर ने बोला कि 5,000-15,000 का मतलब नहीं है, अगर मुझे लगन और मेहनत, एक मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, मेहनत करना मेरे पापा ने सिखाया और हिम्मत और साथ मेरे पीएम जी ने मुझे दिया, तो मुझे दोनों को मिलकर मेरी हिम्मत बनी। तो मतलब 5,000 से नहीं होता, मतलब होता कोशिश करने से। 10,000 से मैंने कोशिश की तो मैं यहाँ तक पहुँची।
1: जी
2: तो 10,000 का अगर किसी इंसान को अगर लगन हिम्मत होगी तो 10,000 पे से अपना व्यापार चला सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें 1-2 लाख रुपए चाहिए, 5,000 से भी बिजनेस चालू कर सकते हैं, लेकिन एक जुनून होना चाहिए।
1: जी और आपको जो ऋण आपने चुकाया बैंक को, वापस दिए पैसे, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई?
2: नहीं, मेरा पेटीएम से लेन देन होता है तो जब मेरा कारोबार बढ़ा तो उसमें किस्त अपने आप ही उससे ही कट जाती है।
1: जी और अब आप क्या सोच रही हैं आगे?
2: अगर पीएम सुनिधि जी का मुझे साथ मिला और ऐसे सर मेरे सामने बैठे, इनका हाथ जोड़कर वो करती हूँ धन्यवाद, जो ऐसे लोग हम लोगों के लिए सेवा में लगे हैं।
1: जी
2: मौका मिला तो कुछ अच्छा कर पाऊँ और आप लोगों के बीच दोबारा आ पाऊँ, यही निवेदन करती हूँ।
1: तो बबीता जी आपका ये हौसला बना रहे, हम यही चाहेंगे। ये बताइए कि आप अपनी पसंद का एक और गाना हमारे श्रोताओं को कौन सा सुनवाना चाहेंगी?
2: जिंदगी प्यार का गीत है
1: जी,
2: इसको सुनना पसंद करूंगी।
1: जी बिल्कुल, यही गाना हम आपको सुनवा रहे हैं सौतन फिल्म से।

0: तो श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में और हमें बबीता जी ने जो कि पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं आपने अपने गाने के माध्यम से हमें संदेश दिया जिंदगी प्यार का गीत है तो गीत जो है वो तब बनता है जब हमें लोगों का साथ मिलता है और पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से हमारी जो बैंकिंग प्रणाली है वो लोगों का साथ दे रही है हर मुश्किल के घड़ी में ताकि हमारे जो रेड़ी पटरी पर काम करने वाले भाई बहन हैं और जो इस समय संघर्ष की स्थिति का सामना कर रहे हैं या फिर खोमचे वाले हैं खोखे वाले हैं वो बैंक से लोन ले सके और अपने काम को आगे बढ़ा सके और फिर बबीता जी की तरह समय से वो लोन चुकाकर बड़े लोन का सपना देख सके बड़े काम का सपना देख सके। तो मैं शैलेश जी यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी हम अक्सर ये मानते हैं कि जो बैंकों का मुख्य कार्य है वो ये है कि हम जो कमाई करते हैं उसमें से जो हिस्सा बैंक को हम देते हैं यानी हमारी सेविंग्स उसकी सुरक्षा करना लेकिन हम आजकल ये देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो बैंकों के माध्यम से समाज के अलग अलग वर्गों को मिल रही हैं। मैं आपसे कुछ ऐसी मुख्य सुविधाओं के बारे में जानना चाहूंगी जिनसे लोगों को लाभ जरूर उठाना चाहिए क्या इस तरह की मेन स्कीम्स हैं जिनके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे।
1: नीलम जी आपने बिल्कुल सही कहा कि बैंकों का मुख्य काम है कि आपने जो अपने जीवन में बहुत मेहनत करके जो गाढ़ी कमाई की है
0: जी
1: उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए तो उसमें बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान है लेकिन इसमें एक लॉकर की भी सुविधा आती है
0: जी
1: कि जैसे आप बहुमूल्य जो आपके गहने हैं या जेवरात हैं या जो बहुत महत्वपूर्ण कागजात हैं जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कोई संपत्ति खरीद रहे हैं तो उसके कागजात हैं और अब तो बहुत लोग अपनी वसीयत भी तैयार करते हैं सो जो है ये सब को भी अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं केवल अपने गाढ़ी कमाई को नहीं बल्कि जो जेवरात या जो बहुमूल्य सामान है आपके जीवन के उनको भी सुरक्षित करने के लिए लॉकर की सुविधा है
0: जी।
1: और फिर बहुत सारे निवेश करने में आपको सहायता या परामर्श देने का भी काम बैंक करती है और जैसे आप अपने बच्चों के जीवन में आगे कब एजुकेशन में क्या खर्च आएगा उनके मैरिज के समय उनके विवाह के समय क्या खर्च आएगा फिर उनके बाद आप को कोई घर खरीदना हो या आपको गाड़ी खरीदनी हो तो किस समय क्या जरूरत आएगी उसके हिसाब से आप अपनी योजना बना सकते हैं
0: जी।
1: इसमें भी बैंक जो है आपको मदद करती है एक परामर्शी सेवा भी प्रदान करती है जिसको हम लोग वेल्थ सर्विसेज भी कहते हैं
0: जी।
1: और वह भी बैंक कर रही है अपने चुने हुए ग्राहकों के लिए और जो व्यवसायी वर्ग है जिस तरीके का वो व्यवसाय करना चाहते हैं उन सबके लिए ऋण की सुविधा है और जो स्टार्टअप्स लाना चाहते हैं तो बेसिक स्टार्टअप तो स्वनिधि भी एक तरीके का स्टार्टअप ही है
0: जी
1: और उससे थोड़ा ऊपर का मुद्रा से शुरू होता है लेकिन हमने आईटी सेक्टर में बहुत प्रगति की है हाल के दिनों में और बहुत सारी कंपनियां ऐसी आई हैं जो केवल आईटी सर्विसेज शुरुआत दे रही हैं सेवा प्रदान कर रही हैं खासकर आईआईटी आईएम से पढ़े हुए युवा सो वो अगर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके इकोसिस्टम को भी बैंक मदद कर रही है
0: जी।
1: जितने आप ट्रेडर

0: और मर्चेंट्स, रियल एस्टेट, बिल्डर्स देखते हैं, सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं कि उनकी जो भी जरूरतें हैं, वित्तीय जरूरतें
1: जी,
0: सब कुछ ये बैंकिंग सेक्टर में क्षमता है आज के दिन में कि सबकी जरूरतों को हम पूरा कर सकते हैं
1: जी।
2: नीलम जी, चूंकि पीएम स्वनिधि की बात हो रही है
1: जी,
2: तो शैलेश जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि ये तो वित्तीय सेवाएं बैंक देती ही है या निवेश के लिए परामर्शी सेवाएं, इसके अलावे जो CSR के तहत
1: जी
2: आप देखेंगे कि गांव में, आप शैलेश जी इस बात से सहमत होंगे कि RCT रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो हर एक जिला एक बैंक के साथ जुड़ा है एज ए लीड डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम से
1: जी।
2: तो वो उसको चलाना है RCT का इंस्टीट्यूट, जिसमें कि वहाँ के युवाओं को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके स्किल डेवलपमेंट में सहयोग प्रदान करती है
1: जी।
2: तो RCT की भूमिका है। उसी प्रकार से जो एक फार्मर्स ट्रेनिंग क्लब है जिसमें किसानों को आधुनिक कृषि सेवाएं या कृषि कैसे किया जाए उसके बारे में जानकारी
1: जी,
2: बीज मिट्टी का जो उपयोगिता कैसे बढ़ाई जाए उसके विषय में उनको जानकारी दी जाती है, पेड़ पौधे किस तरह से किस मौसम में लगाई जाए
1: जी,
2: इन सब की भी सुविधाएं बैंक देती है
1: जी। यानी समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं, जो अलग अलग कामों से जुड़े हैं, सभी के लिए बैंकिंग सेक्टर में कुछ ना कुछ है
2: जी,
1: बस जाकर सही बात के लिए क्या सुविधा है उसका चयन करने की और प्रक्रिया को समझने की जरूरत है। चलते चलते आपसे एक और सवाल, कई बार लोगों को शिकायत होती है बैंकों से भी, सुविधाएं तो बहुत मिल रही है, अगर ऐसा लगता है कि बैंक समय से हमारी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे या कोई ऐसी प्रक्रिया है जो समझ में नहीं आ रही है, बहुत जटिल है या बार बार जाना पड़ रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो बैंकों के बारे में शिकायत कहाँ की जाए?
2: बहुत ही सही प्रश्न है ये। आज के समय में ग्राहक सेवा
1: जी
2: प्रथम स्थान पे है सभी बैंकों के लिए
1: जी,
2: और उसमें अगर किसी को इस तरह की परेशानी होती है
1: जी,
2: हर एक बैंक का वेबसाइट है या आप पत्र के माध्यम से उसके प्रधान कार्यालय को या स्थानीय कार्यालय, जैसे स्टेट बैंक का LHO होता है, हमारा अंचल कार्यालय या मंडल कार्यालय होता है, अन्य बैंकों की इस तरह की सुविधा है, वहाँ पत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। एक CRM कस्टमर रिडर्सल पोर्टल भी है, वहाँ पे वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ओम्बड्समैन की प्रक्रिया है जिसमें RBI के माध्यम से आप अपने शिकायतों को उठाते हैं और उसका क्रमशः नीतिगत रूप से निदान होता है, निपटान होता है, और ये सब चीजें आजकल बैंकों के लिए हम लोग फीडबैक मांगते हैं कि हमारे जो शाखाएं हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं या जो अन्य वर्टिकल्स हैं वो कहीं भी समस्या है तो उसको ग्राहक से सुनकर एक फीडबैक के रूप में उसको लिया जाता है, और ये सारे माध्यम है जिनके माध्यम से ये सारे शिकायतों का निपटान हो सकता है
1: जी। यानी अगर कोई परेशानी है तो उसका समाधान भी हमें बैंक से ही मिल जाएगा। तो राजेश कुमार जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ, महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक से हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे। श्री शैलेश कुमार, आप महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज रही श्रीमती बबीता शर्मा, आप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की ऐसी लाभार्थी जो हमारे हर तीज त्योहार में हमारे साथ होती हैं, बस हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि हम जो पूजा का सामान लाते हैं और अपने पर्व त्योहारों पर अपने घर को जो हम सजाते हैं, अपने अनुष्ठानों में अपनी आस्था को रंग भरते जो सामान हम इस्तेमाल करते हैं, उस सामान को बबीता जी बेचती हैं अपनी दुकान पर, जो दुकान इन्होंने बढ़ाई है, सजाई है, जिसे पहले से बेहतर किया है आपने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से। और इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है ये हमारे दोनों विशेषज्ञों ने हमें बताया है बबीता जी की कहानी से। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बहुत सारे श्रोता प्रेरित होंगे और फिर जीवन में आगे बढ़े। आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से मैं अपने सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही अपने विशेषज्ञों का भी यहां पर आभार व्यक्त करती हूं। तो राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमें समय दिया।
2: बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी और सभी श्रोताओं को कि हम लोगों को आकाशवाणी दिल्ली को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया, आप हमारे स्टूडियो आए।
0: धन्यवाद नीलम जी, और बबीता जी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में अपने अनुभव को साझा किया है, हमको लगता है कि वह एक मील का पत्थर साबित होगी जो इसका लाभ लेना चाहते हैं।
3: धन्यवाद
0: राजेश,
1: धन्यवाद बबीता जी आपका। तो अपने सभी श्रोताओं को एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं नीलम मलकानिया, कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स और कार्यक्रम प्रस्तुत शाहनवाज खान के साथ पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। इंडोनेशिया में 240 से अधिक यात्रियों वाली नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल लापता। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के

0: भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
0: प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं और बाधाओं ने ये साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
0: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स से डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है।
1: स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। ये हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
1: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से एआई, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेनर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
0: अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां हमारे संवाददाता दीपेंद्र मौजूद हैं। दीपेंद्र, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें क्या हैं?
2: देखिए जिसका आपको बता दूं कि वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए इस ब्रिक्स समूह में अभी 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 50% आबादी और वैश्विक व्यापार के लगभग 25% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिहाज से बात करें तो ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जो दर्शाती है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है।

0: ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इस कड़ी में अलग अलग विषयों पर लगभग 350 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया जो भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। आपको बता दूं कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज और समर्थक के रूप में अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया है। जी कनक,
1: संबोधन की मुख्य बातें क्या थी प्रधानमंत्री की?
0: देखिए, संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई सारे बातें की जिसमें सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात थी। उसमें सबसे जो प्रमुख बात थी वो थी साउथ की आवाज, जो वैश्विक भूमिका जो है ग्लोबल साउथ, उस पर उनकी रही। जी,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों सहित नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और जानकारी के साथ है हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान। अक्षित, इन बैठकों में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है?
2: जी कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आज भी कई अहम द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले दो दिनों से लगातार दुनिया के अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आज भी बैठकों का ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों से के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वहीं नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी प्रधानमंत्री की अहम बैठकें निर्धारित हैं। यानी आज का दिन भी कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन बैठकों पर सबकी नजर टिक, जिनके माध्यम से भारत को द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के विषयों पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर ब्रिक्स के मंच से इतर प्रधानमंत्री मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकातें भारत की कूटनीति सक्रियता और वैश्विक साझेदारियों को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। जी कनक,
1: धन्यवाद अक्षित। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ब्रिक्स में ऐसे कई ठोस कदम उठाए गए जिससे भारत विकसित देश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर होगा।
3: भारतीय हितों की सर्वाधिक रक्षा हो, भारतीय हितों का संरक्षण हो, यही मूल उद्देश्य होता है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और बहुत से विषयों पर चर्चा हुई। भारत विकसित भारत बने, इस दिशा में बहुत से ठोस कदम भी ब्रिक्स में भी उठाए गए।
1: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्रिक्स में भारत की विदेश नीति सफल हुई है।
4: ये बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं उन्होंने एक वैकल्पिक बहुत प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मंच रखा है और राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज ब्रिक्स का जीडीपी पूरे यूरोप अमेरिका के जीडीपी से ज्यादा है। और जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम में जो हुआ एक जबरदस्त कंडेमनेशन हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो भारत की विदेश नीति बहुत ही सफल हुई।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। अगस्त 2025 की तुलना में इस बार माल ढुलाई से मिलने वाले राजस्व में भी 6.27% की वृद्धि हुई है। मिजोरम में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन को शुरू हुए आज एक वर्ष हो गया है। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन पिछले वर्ष आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में श्री गणेश ज्ञानरात्रि शीर्षक वाली पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारत एक समृद्ध और तेजस्वी ज्ञान परंपरा का स्वामी है।
5: तो जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, संस्कार, भाषा, अभिलेख, परंपराओं की रक्षा नहीं कर सकता,

0: वो कितना भी शक्तिशाली हो उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती है। और जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, परंपराएं, संस्कार, अभिलेख, भाषाएं, व्याकरण की रक्षा करता है वो कितने भी साल गुलाम रहे उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। भारत इसका उदाहरण।
1: गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई है। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड़ और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दादरा और नगर हवेली में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई है। अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, तापी और डांग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान किया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और गीर सोमनाथ सहित 13 अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आज सुबह 6 बजे तक राज्य के 193 तहसील में बारिश दर्ज की गई। हर्षल पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं भी दी। भारत ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित बेतरावती क्षेत्र में यातायात और संपर्क व्यवस्था को बहाल करने के लिए 70 मीटर लंबे बेली ब्रिज के पुर्जों की पहली खेप भेजी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि पुल के पुर्जों की ये पहली खेप कल हेटौड़ा में नेपाल के सड़क प्रभाग को सौंप दी गई। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया कि कम से कम 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आपने मुकेश की आवाज़ में सुना कन्हैया फिल्म का गाना, आज आपने मास्टर इब्राहिम अजमेरी का क्लैरिनेट सुना। अब आज का इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज़ कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: डैडी डैडी।
1: ओहो, आज तो हमारी बेटी बहुत खुश नजर आ रही है। अरे भाई, आखिर बात क्या है?
0: डैडी, मैं आज आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ।
1: खुशखबरी? वाह वाह वाह, तो फिर सुनाओ भाई, क्या खुशखबरी है?
0: वो राजेश है ना।
1: राजेश? कौन राजेश?
0: वही राजेश जो हमारे घर आया करता है। उसने मेरे साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी है।
1: क्या? तो तुम्हारी शादी और उससे? ये कभी नहीं हो सकता।
0: क्यों नहीं हो सकता? हम एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं।
1: लेकिन मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है।
0: डैडी, आप राजेश को अच्छी तरह नहीं जानते। वो बहुत अच्छा लड़का है। आज मैंने उसे घर पर इनवाइट किया है।
1: अरे आने दो उस बदमाश को, मैं उसकी हड्डियां तोड़ के रख दूंगा।
0: अरे राजेश, आ गए तुम? अंदर आ जाओ। डैडी, ये है राजेश।
2: लेकिन मैं तो
1: बच्चू, रोज छुप छुप कर मेरी बेटी से मिलते थे, आज मेरे जंगल में आ गए हो। अरे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कहाँ है मेरा हंटर?
0: डैडी, डैडी आप क्या कह रहे हैं?
2: सुनिए सर, सुनिए मेरी बात तो सुनिए।
1: अरे ये ऐसे नहीं मानेगा
2: सर, मेरी बात तो सुनिए।
0: डैडी रुक जाइए, डैडी रुक जाइए, मत मारिए मेरे राजेश को। इस हंटर से ना मारो मेरे दीवाने को।
1: तो बरकरार कैसी पिटाई लगाई मैंने?
2: मर गया, मर गया। सर सर, पिटाई तो आपने बहुत अच्छी की, लेकिन आप ये तो बता दीजिए कि मैं आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? हाय
1: क्यों उठाई? अबे अबे, तो तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा बेशरम। पहले तो तुम हाथ धोकर बेटी के पीछे पड़ गए और अब उससे शादी करना चाहते हो?
2: जी
1: खबरदार।
0: राजेश, हिम्मत रखो, तुम शादी के लिए हाँ कर दो। मैं डैडी को मना लूंगी, हमने प्यार किया है, कोई जुर्म तो नहीं किया
2: है। अरे किस कमबख्त ने तुमसे प्यार किया है? मैं मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं तुमसे प्यार करूं?
1: देखा देखा बेटी, चार हंडल पड़े और प्यार प्यार सब भूल गया।
0: ये तुम क्या कह रहे हो राजेश?
2: अरे कौन राजेश? मैं राजेश नहीं हूँ, नहीं हूँ।
0: नहीं नहीं, ऐसा मत कहो राजेश, ऐसा मत कहो। प्यार करने वाले छोटे मोटे पिटाई की परवाह नहीं करते, वो तो हंसते हंसते जान दे देते हैं।
2: ओहो, मैं कहता हूँ मेरा हाथ छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मैं राजेश नहीं हूँ, मैं उसका पत्नी सिर्फ जुड़वा भाई राकेश हूँ।
0: क्या? जुड़वा भाई राकेश?
1: क्या कहा तुमने? राकेश?
0: लेकिन तुम तो बिल्कुल राजेश नजर आते हो।
2: हाय, यही तो रोना है। सिर्फ हमारी शक्लें ही नहीं बल्कि हम कपड़े भी एक ही तरह से पहनते हैं। हाय,
0: तो फिर कहाँ है तुम्हारा भाई राजेश?
2: हाय, राजेश ने मुझे बताया था कि वो इस वक्त यही होगा। अब मैं उसे एक जरूरी मैसेज देने आया था। हाय,
1: अरे बेटा, अरे बेटा, अरे मुझे तो पहले ही शक पड़ गया था कि तुम वो नहीं हो। अरे बेटा, तभी तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा।
2: जी
1: हाँ,
2: यानी कि आपने कुछ नहीं कहा?
1: नहीं।
2: बिल्कुल, आपने तो कुछ कहा ही नहीं।
1: तो तुम्हारा क्या नाम है? राकेश। सुनो भाई, सुनो भाई, तुम जल्दी से घर जाओ और अपने जुड़वा भाई, क्या नाम है यार उसका, राजेश, उसको यहाँ भेज दो।
2: जी, राजेश को यहाँ भेजो?
1: हाँ, हाँ, उसकी ये हिम्मत, ये मजाल कि मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। अरे देखता हूँ कैसे करता है वो मेरी बेटी से शादी।
2: जी जी जी, मैं बिल्कुल समझ गया, मैं समझ गया, मैं उसे अभी जाकर भेजता हूँ।
0: डैडी, आपने उसके जुड़वा भाई की पिटाई कर दी, मैं बर्दाश्त कर गई। अब अगर आपने राजेश को कुछ कहा तो मैं कुछ खाकर मर जाऊंगी।
1: अरे बेटी, तुम तो हर वक्त कुछ ना कुछ खाती ही रहती हो, अब मरोगी तो कुछ खाकर ही मरोगी ना। जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ।
0: राजेश, तुम आ गए, कहाँ थे तुम?
2: मैं तो
1: मैं ये

आज के हवा महल में हम आपको सुना रहे हैं वीएम आनंद का लिखा प्रहसन राजेश और राकेश, निर्देशक हैं श्याम सुंदर प्रसाद।

0: बस वो सिर्फ 5 बजे यहां पहुंच जाए।
1: अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं अब यहां रुककर क्या करूंगा? अलविदा, मैं जा रहा हूं अमेरिका के लिए।
2: नहीं नहीं, मत जाओ राजेश, मत जाओ, रुक जा, रुक जा। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के।

0: Bate, bate, bate, bate, bate बज गए। और ये राकेश का बच्चा अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं आया?
1: मुझे क्या पता, अगर आप मेरी शादी राजेश से करते तो देखते कि वो कितना पंक्चुअल है।
0: आओ आओ बेटा राकेश, अंदर आ जाओ, तुम्हारी इंतजारी कर रहा था। अरे अरे मेरे लाल, अरे बेटा तुम्हारे पीठ में दर्द वर्द तो नहीं है बेटा? बातें बातें बाद में करेंगे बेटा, पहले रिंग सेरेमनी। ये लो ये अंगूठी, तुम मेरी बेटी की उंगली में पहनाओ। और बेटी चलो इधर आओ, इधर आओ। ये अंगूठी
2: क्या कह रहा?
0: और ये अंगूठी तुम राकेश बेटे के हाथ में पहनाओ। अरे जल्दी करो, नहीं तो वो बदमाश राकेश आ गया ना, तुम एक नया बखेड़ा खड़ा कर दे रहा।
1: डैडी डैडी आप क्या कह रहे हैं?
2: आप मेरी बात तो सुनिए।
0: अरे अरे बेटा सुनना क्या है, अरे तुम यही कहना चाहते हो ना कि जिस लड़की से तुम्हारे भाई ने प्यार किया है तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो? लेकिन मैं कहता हूँ पहनाओ एक दूसरे को अंगूठी, वरना वरना देखो मेरा हंटर।
2: तकदीर
0: में होता है वो होके ही रहता है। और बेटा राकेश, लड़कियों को रोते सुना था, तुम क्यों रो रहे हो?
2: मैं तो रो नहीं रहा हूँ, ये तो खुशी के आंसू है।
0: खुशी के आंसू? कैसे खुशी के आंसू?
2: जी जी ये खुशी के आंसू है।
0: क्या मतलब?
2: मैं राकेश नहीं हूँ, मैं वही बदनसीब राजेश हूँ।
0: क्या
2: जी? मैं तो बताने आया था कि राकेश 5:30 बजे आएगा।
1: राजेश तुम?
0: अरे चाहता था कि मेरी बेटी की शादी राकेश की हो। अरे शादी तुमसे हो रही है, मेरी किस्मत।
1: आपको क्या फर्क पड़ता है डैडी?
0: क्यों क्यों नहीं पड़ता?
1: एक ही रंग, एक ही आवाज।
3: राजेश और राकेश हवा महल में अभी आप वीएम आनंद का लिखा यह प्रहसन सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया श्याम सुंदर प्रसाद ने। यह थी आकाशवाणी के पटना केंद्र की प्रस्तुति।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म राज 3 के इस गाने के साथ। इसे गाया है जावेद अली ने, गीत और संगीत राशिद खान का है।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: चित्रलोक कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे ब्रेक के बाद।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हमारे आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इंडोनेशिया के जावा सागर में नौका पलटने से 6 लोगों की मौत, लगभग 130 लापता। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स

0: विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भविष्य में महामारी से निपटने के लिए बेहतर सहयोग और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए एक साझा चेतावनी प्रणाली विकसित करने का समर्थन किया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम एशिया की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया।
3: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तू तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में

0: श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिश्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं।
5: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए, 7.8% का ग्रोथ रेट, हमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और व्यापक क्षेत्र

0: क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति की संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
0: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
2: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निधिश्री।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले के गाए जुदाई फिल्म के इस गाने के साथ। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान सोन

0: 14 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना। इसे लिखा है वर्मा मल्लिक ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

आइए अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में कस्मे वादे फिल्म का गाना। इसे लिखा है गुलशन बावरा ने, संगीत से सवारा है आर डी बर्मन ने।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला और गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आइए अब सुनते हैं शायद फिल्म का गाना मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजों में। गीत लिखा विट्ठल भाई पटेल ने, संगीत मानस मुखर्जी का है।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

आप सभी को रेनू बंसल का नमस्कार। आज हमारी फनकार हैं अभिनेत्री महिमा चौधरी।

0: दोस्तों, ये गाना फिल्म परदेस का था और परदेस महिमा चौधरी की पहली फिल्म थी। वो शोमैन सुभाष घई की खोज है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुभाष घई जब भी किसी अभिनेत्री को पहली बार हीरोइन बनने का अवसर देते हैं तो उसे एक नया नाम भी देते हैं और ये नाम हमेशा म से शुरू होता है और महिमा के साथ भी यही हुआ। माता पिता का दिया हुआ नाम ऋतु चौधरी घर में ही रह गया और फिल्मों के लिए महिमा मंडित हुआ नया नाम महिमा। लेकिन इस बात की पूरी जानकारी स्वयं महिमा चौधरी के स्वर में।
1: क्रेडिट दे देते हैं कि सुभाष जी ने मुझे नाम दिया, ये मैंने खुद चुना था। उन्होंने जरूर कहा था कि तुम्हारा नाम दे रहा हूँ मैं प्रेस में, तो ऋतु चौधरी ही दूं कि कुछ और रखना है। तब मेरे ध्यान में आया कि अरे नहीं, नाम तो बदला जा सकता है। मुझे वैसे ही ऋतु के नाम से ये हो गया था कि मेरी क्लास में ही चार चार ऋतु थी, तो एक कंफ्यूजन हो जाता था। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही कॉमन नेम है, आई डोंट बी कंफ्यूज्ड विद एनीवन। मम्मी पापा ने सोचे बगैर ही मेरा नाम ऋतु रख दिया तो कोई अच्छा सा नाम रखते हैं। मैंने बहुत सारे नाम ढूंढे और अगले दिन जब सुभाष जी को मैंने पढ़ाए तो उन्होंने कहा कि इसमें एम से कोई नाम नहीं है, एम से नाम होना चाहिए क्योंकि एम मेरे लिए बहुत लकी है। मैंने कोई भी नाम, कोई भी फर्म जब शुरू की है, जैसे मुक्ता आर्ट्स फिल्म्स, वो सक्सेसफुल रही है। टेलीविजन पे मैंने दृष्टि शुरू की थी, वो एकदम फ्लॉप हो गई, तो एम से नाम रखो तुम। तो मेरे जो पापा हैं उनके बेस्ट फ्रेंड, उनकी बेटियों का नाम है रिधिमा महिमा। मैंने कहा महिमा कैसा है, ही सेइंग इट्स नाइस, तो फिर हमने महिमा रखा।

0: India.
1: अपने देश से प्रेम करने वाली महिमा चौधरी का जन्म दार्जिलिंग में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई। हॉस्टल में रहने से उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता शुरू से ही रही। हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ वो नेपाली भाषा भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं और बोलती भी हैं।
2: दार्जिलिंग को एकदम याद आउँछ। अन्त जे पनि म आज हु त्यो त्यही दार्जिलिङमा सिकेको, अन्त हाम्रो नेपाली भाइ बहिनी कोबाटै सिकेको, अन्त मेरो सबै म्यानरिजम्स त्यहीँबाट हो। एन्ड टु लभ अल्सो इज आई लर्न फ्रम द नेपालीज पिपल, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं।
1: महिमा चौधरी शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर उनका करियर फिल्मों में बनेगा ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। खैर, शुरुआत मॉडलिंग से हुई और उन्होंने एक शीतल पेय का विज्ञापन किया। बस यहीं से वो लाइमलाइट में आई और फिल्मी दुनिया के दरवाजे उनके लिए अपने आप खुल गए। फिल्म परदेस में गंगा के रोल में उन्हें फिल्मी दुनिया में एंट्री भी मिली और फिल्म की कामयाबी से शोहरत भी मिली और बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का डेब्यू अवार्ड भी उन्हें मिला। फिल्म परदेस के बाद महिमा की बहुत दिनों तक ऐसी कोई फिल्म नहीं आई जो बॉक्स ऑफिस पर वैसी भीड़ जुटा पाती जैसी कि परदेस ने जुटाई थी। लेकिन महिमा के नाम की लगन लोगों को उनकी फिल्में देखने के लिए खींच ही लाती।

महिमा चौधरी की जितनी फिल्म्स अब तक रिलीज हुई हैं, उनमें से ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टार कास्ट वाली हैं। फिर भी हर फिल्म में महिमा ने अपने रोल के साथ न्याय तो किया ही है, अपनी अदाकारी के तीरों से देखने वालों को घायल भी किया है।

दिखने में शोक और चंचल महिमा चौधरी स्वभाव से गंभीर हैं। बहुत से लोगों में घिरे रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन जब सेट पर आती हैं तो रोल जैसा भी हो उसमें पूरी तरह से डूब जाती हैं। फिल्म ये तेरा घर ये मेरा घर एक ऐसी फिल्म थी जिसमें सरस्वती की भूमिका में उन्होंने लोगों को रुलाया भी तो बहुत हंसाया भी।

महिमा चौधरी के संवेदनशील अभिनय से सजी एक और बहुत प्रभावशाली फिल्म थी दिल क्या करे। ये एक ऐसी पत्नी की कहानी है जो अपनी गोद ली हुई बेटी से बेहद प्रेम करती है और नहीं जानती कि उसका पति ही उस बच्ची का जन्मदाता है। लेकिन जब ये राज जाहिर होता है तो जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है।

महिमा चौधरी ने अपने करियर में तरह तरह के रोल्स अदा किए हैं। फिल्मी दुनिया में महिमा चौधरी उन चंद अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जिन्हें अपने अभिनय को विभिन्न रंगों में रंगने का अवसर मिला। शुरुआत हुई सन 1997 में फिल्म परदेश से। इस फिल्म में उन्होंने गांव की सीधी साधी संस्कारों में बंधी लड़की गंगा का रोल किया। 1999 में फिल्म आई प्यार कोई खेल नहीं, इसमें एक ऐसे विधवा के रोल में थी वो जिसे अपने पति के भाई से ब्याह रचाना पड़ा। फिल्म धड़कन आई सन 2000 में, इसमें महिमा चौधरी शीतल वर्मा के किरदार में थी। शीतल वर्मा एक ऐसी प्रेमिका जिससे वो प्यार करती है, वो किसी और लड़की के प्रेम में दीवाना है।

लज्जा की बात करें तो इस फिल्म में उनके साथ स्क्रीन शेयर की माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला ने। इसमें उनका रोल मैथिली का था, सशक्त अभिनय था। मैथिली के रूप में एक ऐसी लड़की जो अपने पिता की इज्जत की खातिर दहेज के लोभियों को बहुत करारा जवाब देती है और शादी के मंडप से उठकर इनकार कर देती है। और फिल्म लज्जा महिमा चौधरी की पर्सनल फेवरेट फिल्म भी है।

बात करें अगर फिल्म बागबान की तो उसमें उनकी स्पेशल अपीयरेंस थी। सलमान खान की वो संस्कारी पत्नी बनी थी और इस रूप में उन्होंने सबका दिल जीत लिया।

महिमा चौधरी की कुछ और फिल्में हैं ओम जय जगदीश, एलओसी करगिल, सैंडविच, गुमनाम द मिस्ट्री और मुंबई द गैंगस्टर्स। दोस्तों, फिल्म परदेस में स्क्रीन पर महिमा चौधरी ने गाना गाया था जहां पिया वहां में। ये तमन्ना उनकी पूरी हुई सन 2006 में, जब उन्होंने आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी को अपना पिया माना और अपनी गृहस्थी में रम गई। एक प्यारी सी उनकी बच्ची है। श्रोताओं, ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो आज केंद्रित था अभिनेत्री महिमा चौधरी पर। प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिप्पर। अब दीजिए रेणु बंसल को भी इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।

छाया गीत में आज मैं लेकर आया हूं ऐसे नगमे जिनके दो संस्करण हैं, एक पुरुष आवाज में, दूसरा महिला आवाज में। हमने इन दोनों संस्करणों को किसी मोड़ पर आपस में जोड़ दिया है। नमस्कार, यूनुस खान की ओर से। अंधेरा, घना अंधेरा, आंसू, सर्द आंसू, तन्हाई, बेपनाह तन्हाई, एक सजा है तन्हाई, एक जुल्म, एक मुश्किल दौर।

अफसोस के नगमे, उदास नगमे, क्यों अच्छे लगते हैं सबको ये उदास नगमे? क्यों मुकेश की उदास आवाज हमारी तन्हाइयों की साथी है? क्यों हम तन्हाई में थाम लेना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज का दामन? दो उदास नगमे, दो उदास मौसम।

एक चेहरा, एक मिजाज, एक शख्सियत कैसे बयां करें कुछ अल्फाज में। शब्दों के मायने छोटे लगने लगते हैं और हर बार हमें लगता है पूरी तरह हम नहीं कह पा रहे अपनी बात।

दुनिया की दो अलग अलग छोर, इन अलग अलग हिस्सों में पले लोग बने होते हैं एक दूसरे के लिए। कितनी अजीब बात है, कहते हैं जिंदगी में इत्तेफाक होते हैं और बहुत खुशनुमा इत्तेफाक होते हैं।

अच्छा या गीत में आज थे दो संस्करणों वाले गाने। इन गानों को हमने किसी मोड़ पर आपस में जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम आपको बता दें।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
2: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
2: सुबह और शाम 6:45 पर
1: सिर्फ विविध भारती पर।

0: मेरा सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज प्रस्तुत है विशेष रूपक साहित्य कल और आज। दोस्तों हिंदी दिवस केवल हिंदी बोलने या हिंदी में भाषण देने का दिन नहीं है, ये दिन हमें एक छोटा सा सवाल पूछने का अवसर देता है। क्या हम अपनी भाषा से उतना ही प्रेम करते हैं जितनी अपनी भाषा पर गर्व करते हैं? भाषा तभी जीवित रहती है जब वो बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है और अगली पीढ़ी तक पहुँचाई जाती है। 14 सितम्बर हमारे लिए केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसी ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी निर्धारित की गई है। हिंदी की कहानी सिर्फ 1949 से शुरू नहीं होती, उसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं। इतनी गहरी कि उन्हें तलाशते तलाशते हम संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तक पहुंच जाते हैं। समय बदला, बोलियां बदली, शब्द बदले और भाषा भी अपना रूप संवारती गई। ब्रज ने इसे माधुर्य दिया, अवधि ने उसे लोक की आत्मा दी।
1: पुरा के पतवा सर के डोले मनवा कि ही आरा में उठत ही लो।
0: खड़ी बोली ने आधुनिक हिंदी को स्वरूप दिया। उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी और भारत की अन्य भाषाओं से आए शब्दों ने उसके शब्द भंडार को और विस्तार दिया। यही तो हिंदी की खूबसूरती है, वो अपने भीतर बहुत सारी भाषाओं को समेट कर चलती है, इसलिए हिंदी भाषा से बहुत जल्द प्यार हो जाता है।

0: दोस्तों, हिंदी आज हर वर्ग हर दौर के लिए कितना, कैसे और क्यों आवश्यक है, हिंदी किस तरह समृद्ध है, आइए जानें एक ऐसे साहित्यकार से जो लेखन की दुनिया के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें पढ़कर युवा लेखकों की कलम समृद्ध होती है। आप हैं प्रियमवत जी।
1: किसी पीढ़ी के मन से जुड़ने के लिए किसी साहित्य या कहानी की भाषा में कोई बदलाव नहीं किया जाता। पीढ़ी से जुड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, ना कि ये कि कहानी या कि साहित्य अपने आप में समर्थ, प्रभावी और विस्तृत हो। भाषा को आप पीढ़ी के हिसाब से या समय के हिसाब से नहीं बदल सकते, बेशक कथ्य को बदल सकते हैं। कथ्य इसलिए बदल जाता है कि समाज बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, राजनीति बदलती है और चीज़ों के विश्लेषण और उसके अर्थ बदलते हैं। यदि नई पीढ़ी इनको समझती है तो वो अपने आप साहित्य से और कहानी से जुड़ेगी, और यदि मुद्दों को नहीं समझती तो वो कुछ भी करने पर इससे नहीं जुड़ेगी। प्रचार और प्रसार तो किसी भी भाषा का तब होता है जब वो रोजी रोटी से जुड़े या कामकाज की भाषा बने, या फिर लोग उस भाषा को स्वयं बनाए और स्वीकार करें, जैसा कि उर्दू के साथ उसने किया और जिसे अब हम हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं। ये वही भाषा है जिसे लोग ने खुद गढ़ा। इसमें विदेशी शब्द भी हैं, इसमें फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली भी हैं, इसमें बंगला, मराठी भी हैं, संस्कृत के शब्द भी हैं, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, इनके शब्द भी हैं। ये भाषा लोक की भाषा है और इसका प्रचार प्रसार अपने आप होता चलेगा। बाकी इसके अलावा सिनेमा ये काम करता है, रेडियो ये काम करता है, दूरदर्शन ये काम करता है, मनोरंजन के साधन ये काम करते हैं जो सब जगह पहुंचते हैं। साहित्य का ये काम मुख्य रूप से नहीं होता और वो ये काम इसलिए करता भी नहीं।
0: हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। उन्होंने केवल कविता नहीं लिखी, केवल नाटक नहीं लिखे, बल्कि उन्होंने भाषा को सामाजिक जागरण का माध्यम बनाया। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी में नए विचारों के लिए मंच तैयार किया। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति हम सबको याद आती है, निज भाषा उन्नति यह है, सब उन्नति को मूल। आज भी हिंदी के प्रति हमारे दृष्टिकोण को मजबूत बनाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद भी हिंदी की मशाल बुझी नहीं। सन 1993 में क्वींस कॉलेज वाराणसी के तीन विद्यार्थियों श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने हिंदी भाषा, साहित्य और देवनागरी लिपि की उन्नति के लिए नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। नागरी प्रचारिणी सभा के प्रयासों से हिंदी के विकास को नई दिशा मिली। देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार, हिंदी साहित्य के संरक्षण और शब्द संपदा को समृद्ध करने में इस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी के अनेक दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह और प्रकाशन हुआ यहीं से। शब्दकोश और साहित्यिक सामग्री तैयार की गई। इस तरह नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी को केवल बोलचाल की भाषा

से आगे बढ़ाकर ज्ञान, साहित्य और विचार विमर्श की सशक्त भाषा बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। हिंदी के विकास में पत्रकारिता ने बड़ी भूमिका निभाई। उदंत मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। इसके प्रकाशक और संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। 1826 को कलकत्ता से इसका पहला अंक निकला। कल्पना कीजिए, उस समय न इंटरनेट था, न सोशल मीडिया, न टेलीविजन। एक छपा हुआ पन्ना ही विचारों को दूर दूर तक ले जाने का माध्यम था। इसलिए हिंदी पत्रकारिता का इतिहास केवल समाचारों का इतिहास नहीं है, ये जागती हुई भाषा और जागते हुए समाज का इतिहास भी है। हिंदी की यात्रा में कितने ही साहित्यकार आए, कबीर, सूर, तुलसी से लेकर मुंशी प्रेमचंद तक का हिंदी में रचा गया साहित्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह था। मुंशी प्रेमचंद ने किसान, मजदूर, स्त्री, गरीब और मध्यम वर्गीय जीवन की पीड़ा को साहित्य की आवाज बनाई। गोदान का होरी हो या कफन का संसार, प्रेमचंद ने हिंदी को केवल मनोरंजन की भाषा नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे समाज का आईना बना दिया। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान पर फिल्म बनी गोदान, जिसके निर्देशक थे त्रिलोक जेटली। आइए यहाँ पर गोदान फिल्म का गाना सुनते हैं।

इसके बाद हिंदी में आई एक नई संवेदना, महादेवी वर्मा। उनकी लेखनी में करुणा थी, संवेदना थी और स्त्री मन की गहरी अनुभूति। महादेवी वर्मा का एक गीत फिल्म त्रिकोण का चौथा कोण में शामिल था, जिसे बड़े ही सुंदर ढंग से छाया गांगुली ने स्वर दिया और जयदेव का संगीत था।

मैत्री शरण गुप्त ने राष्ट्र और समाज की चेतना को स्वर दिया। रामधारी सिंह दिनकर ने ओज भरा। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन सब ने हिंदी कविता को अलग अलग रंग दिए और इसीलिए हिंदी साहित्य कोई एक रंग की तस्वीर नहीं, ये तो रंगों से भरी एक विशाल चित्रशाला है। यहाँ आपको सुनवा रहे हैं जयशंकर प्रसाद की रचना, जिसे आशा भोसले ने गाया है।

आज हिंदी भारत की सीमाओं से बहुत आगे पहुंच चुकी है। मॉरिशस, फिजी, सुरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद, टोबैको जैसे अन्य कई देशों में भारतीय मूल के समुदायों के बीच हिंदी की अपनी अहम उपस्थिति है। डिजिटल युग ने तो हिंदी को एक नया आकाश दे दिया। आज मोबाइल के स्क्रीन पर हिंदी पढ़ी जा रही है, हिंदी में ब्लॉग लिखे जा रहे हैं, हिंदी के पॉडकास्ट सुने जा रहे हैं, फिल्में और वेब सीरीज हिंदी में देखी जा रही है। हिंदी किताबों के साथ साथ फिल्मी गीतों में भी सांस लेती है। फिल्मी गीतों ने हिंदी के शब्दों को उन श्रोताओं तक भी पहुंचाया जिन्होंने शायद कभी कविता की किताब भी न खोली हो। और यहाँ हमें याद आते हैं एक ऐसे कवि जिनकी कविता मंच से लेकर सिनेमा तक पहुंची, वो हैं

बाल कवि वैरागी। उनके साहित्य में मालवा की मिट्टी की खुशबू थी, लोक जीवन की सहजता थी और शब्दों में आत्मीय मिठास। फिल्म रेशमा और शेरा के लिए उन्होंने लिखा ये गीत।

0: ये गीत केवल एक फिल्मी गीत बनकर नहीं रह गया दोस्तों, उसमें राजस्थान की लोक संस्कृति, प्रेम और प्रकृति का ऐसा सम्मोहन था कि गीत सुनते ही लगता है जैसे रेगिस्तान की रात में चांद उतर आया हो। बाल कवि बैरागी ने दो बूंद पानी, वीर छत्रसाल, क्षितिज, रानी और लालपरी, जादू टोना और अनकही जैसी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। अनकही में उनका गीत मुझको भी राधा बना ले नंदलाल बहुत ही पसंद किया गया। हर दौर में कवियों का कविता के साथ साथ गीतकारी का सफर चलता रहता है और कवि अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहते हैं। जाने माने लेखक, फिल्म समीक्षक, गीतकार और लता सुरगाथा के रचयिता यतीन्द्र मिश्र ने अपने विचार साझा किए हैं।
1: जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, हिंदी में हजारों किताबें आई। थोड़ा सा अगर बढ़ के हम 25 से 30 साल का दायरा करें तो मैंने कुछ कैटेगरीज में विभाजित किया है जो मुझे हमेशा प्रेरित करती हैं किताबें। उसमें अगर हम नॉन फिक्शन या कथेतर के लिए जाएं तो मुझे लगता है कि सर्वाधिक जो अच्छी किताबें थी, जिनका आज भी असर है भाषा के स्तर पर, जिनका एक सकारात्मक संदेश है, जो किसी समाज के किसी तबके की या किसी विचार की बात करती हैं, उनमें सबसे बड़ी किताब मुझे लगती है आज भी खड़े हैं तालाब अनुपम मिश्र की, जो जल संरक्षण पर है और जो शायद पहली किताब है उस पर।
0: जी जी।
1: दूसरी किताब शिखर पाठक की दास्ताने हिमालय मुझे लगती है भाषा के स्तर पर भी और हिमालय को समझने के लिए, उस वनखंड को और उस पूरे पहाड़ को समझने के अर्थ में।
0: जी।
1: और तीसरी किताब जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है वो है स्वदेश दीपक की मैंने मांडू नहीं देखा।
0: क्या बात है।
1: और अगर हम कविता संग्रह पे आए, दो मास्टर पीसेस मुझे लगते हैं, एक केदारनाथ सिंह का टॉलस्टॉय और साइकिल और दूसरा कुंवर नारायण का कुमार जीव, बहुत बड़ा दार्शनिक ढंग का आख्यान है। और बिल्कुल इधर हाल के कुछ वर्षों में प्रकाशित डॉक्टर विनय कुमार की श्रेयसी, जो सरस्वती नदी को आधार बना के ढेर सारी कविताएं उस पर लिखी गई। इसी तरीके से अगर हम चले उपन्यासों की ओर तो मुझे तीन उपन्यास बहुत बहुत समझ में आते हैं। पहला है अलका सरावगी का शेष कादंबरी, दूसरा है अनामिका जी का त्रिनधरी ओठ, जो सीता को सीता पत्र लिखती हैं और राम के संदर्भ में पूरा रामायण का आख्यान बताती हैं, और मनीषा कुलश्रेष्ठ का त्रिमाया, जो मातृसत्तात्मक समाज को लेकर के पूरी बात करती है। इसके अलावा और आलोचनात्मक किताबें या नॉन फिक्शन किताबों में मुझे अनंत विजय की मार्क्सवाद का अर्धसत्य बहुत समझ में आती है। इस अर्थ में कि मार्क्सवाद की एनालिसिस है वो, और वो कोई आलोचना नहीं है, लेकिन वो एक पूरे ढंग से एक पड़ताल करती है, वो सारी बातें दिखाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोपान जोशी की एक किताब है जल थल मल, और वो पूरी तरह से गांधीवादी रहे हैं और किस तरीके से मैला ढोने को लेकर के पूरी किताब लिखी गई है। दो किताबें मुझे बहुत पसंद आती हैं, हालांकि दोनों हिंदी में अनुवादित हुई और बेहद चर्चित हुई। एक आत्मकथा है बेबी हालदार की आलो अंधारी, दूसरा हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर का अनुवाद अग्नि की उड़ान, जिसका उर्दू तर्जुमा भी और ऑडियो बुक भी बनाई गुलजार साहब ने परवाज के नाम से। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो तुरंत याद आती हैं। बाकी दार्शनिक पक्षों को लेकर, राजनीतिक पक्षों लेकर बेहद सुंदर किताबें लिखी गई हैं। राम बहादुर राय ने एक किताब लिखी थी रहबरी के सवाल, तो वो किताब है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से संवाद पर। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है।

0: पॉलिटिक्स के थ्रू पूरे भारतीय परिदृश्य को समझने का
1: जी,
0: और
1: जी।
0: वैसे तो हमेशा से जो महान किताबों का मामला है, मैं मैलांचल, गोधान, राग दरबारी, निर्मल वर्मा की वेदिन, धुन से उठती धुन, मेरी सबसे फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट हिंदी किताब अगर कोई है तो निर्मल वर्मा की डायरी और संस्मरणों की किताब है धुंध से उठती धुन। मैं उसे बिल्कुल गीता या रामायण की तरह भाष्य की तरह देखता हूँ। और अगर क्लासिक लिटरेचर में चले जाएं तो भारत सावित्री वासुदेव शरण अग्रवाल की जो 3 वॉल्यूम में टीका है महाभारत की, उसे जरूर पढ़ना चाहिए कम से कम नई जनरेशन को, जिसे जेनजी कहते हैं। और उसी तरीके से रामायण का काव्य मर्म या हिंदी भाषा दर्शन की टीका विद्यानिवास मिश्र की पढ़नी चाहिए, और सारी किताबें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पढ़नी चाहिए
1: जी जी।
0: और राहुल जी की किताब वॉल जैसे गंगा, तो ये सब किताबें ऐसी हैं जो हिंदी का परिदृश्य बोलती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है अच्छी हिंदी डॉक्टर रामचंद्र वर्मा की
1: जी,
0: अच्छी
1: जी।
0: हिंदी कैसे सीखें, पढ़ें, समझें, ये बातें जैसे हम सांस लेते हैं तो जीवन पाते हैं, किताबें पढ़ते हैं तो हमारी सांसें परिष्कृत होती हैं।
1: बिल्कुल। और हमें नैनन में आन बान के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए।
0: नैनन में आन बान मैंने बिल्कुल युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए एक किताब लिखी, उसमें 12 मूर्धन्य शास्त्रीय संगीतज्ञों पर लेख हैं, जिसमें पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, केसर भाई केरकर, रसूलन बाई, बेगम अख्तर, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के बारे में निबंध है। और 100 पेज का उसमें नोट्स है भारतीय संगीत को, फोक म्यूजिक को, ज्यादातर शास्त्रीय संगीत और सेमी क्लासिकल की बात है। ये समझने की दृष्टि देने के लिए उस किताब के लिखने के पीछे का ध्येय ये था कि हम गाना सुनते क्यों हैं और गाना सुन के सराहते क्यों हैं। उस किताब को लिखने की प्रेरणा जॉन बर्जर की किताब वेज ऑफ सिंग के ऊपर आधारित है, किस तरह से पेंटिंग को देखना समझना चाहिए, किस तरह से शास्त्रीय संगीत को सुनना चाहिए। और अगर मेरी किताब पढ़ते हुए किसी युवा व्यक्ति में, किसी विद्यार्थी में, किसी संगीत
2: ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಿಜಯಪುರ, ಸಮಯ 11:25:40. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲಯದ ಇಂದಿನ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ನಿಲಯದ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:53 ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವುದು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಂತೋಷಿ ಹೇಳುವ ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.